0: Pure Soca Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage, 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
4: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
5: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: This is Leica Gold. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
3: Oh, Julilal Kalandar, mast mast dam.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Leica Gold par har raat ki yahi reel. Purani magar sada bahar geet.

0: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर
1: पायलिया छनकी के ना
2: छनकी छनकी।

0: दो दिलों की मोहब्बत के नतीजे चुप हो जा अपने लाडले फूफा के भतीजे लोरी
1: लोरी लोरी

0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
0: साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणि निदान। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं, गुरुमुख रया समाई। गुरीसर गुरु गोरख बर्मा गुरु।

सो मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना।

वै मन बुद्ध मन्ने सगल पौन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती सन

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लो लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए।

0: नाम बताने में क्या दिक्कत है भाई, बता देना चाहिए। देखिए मैंने कई लड़कियों से ऐसे पूछा है नाम, कुछ बहाने बना बना के। कई बार तो ये कहा कि लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, आपका नाम वाई। तो उनका पहला सवाल था, व्हाई यू वांट टू नो माय नेम। मैडम गुस्सा क्यों कर रही है? बस वैसे ही मैं तो अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पूछ रहा था भाई। ऐसे गीत जिस प्रोग्राम में शामिल होना समझ लेना चाहिए, ये शरारतें करने की इजाज़त मुझे ही है। और बहन भाइयों, मुझे यकीन है कि जब जब मैं नहीं आ पाता हूँ किसी कारण से, थोड़ा बहुत तो मिस ज़रूर करते होंगे आप। लेकिन भाई रितु शर्मा हैं, सरिता जी हैं, और भी कई लोग ऐसे हैं जो याद करने के लिए फुर्सत नहीं देते होंगे आपको, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करके मेरी जगह भर देते हैं। थैंक यू वेरी मच रितु, तो आपके कारण भाई मुझे छुट्टी मिल जाती है। लेकिन बहन भाई छुट्टी लेना नहीं चाहता हूँ, छुट्टी लेनी पड़ जाती है कई बार। एक तो भाई इतनी दूर का सफ़र तय करके यहाँ आने के लिए ऐसा लगता है जैसे समंदर पार करके आया हूँ, हाँ वो लंबी यात्रा करके। और इसके बाद भाई यहाँ पहुँच करके प्रोग्राम करके घर वापस पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है, तो यात्रा में ज़्यादा थकावट होती है, कार्यक्रम में इतनी नहीं होती। खैर साहब पहुँच गए हैं, कल का दिन कैसा गुजरा आपका संडे का? भाई एक दिन तो मेरा सही बताऊँ आपको बुखार ने ले लिया, ये हो जाता है कभी कभी। अब आप ये मत कहिएगा कि उम्र के कारण ऐसा होता रहता है। उम्र क्या है भाई? हाँ उम्र तो कहते हैं, किसी ने कहा था एक संख्या होती है, इट्स जस्ट ए नंबर। लेकिन भाई कभी कभी जो है ना इतनी परेशानी बढ़ती है तो फिर छुट्टी लेनी पड़ जाती है, और कभी कभी कोई काम पड़ जाता है, कभी रेलों की स्ट्राइक, कभी सिग्नल फेल, तो कई रुकावटें होती हैं। उन सबको पार करके आपसे मिलने के लिए मैं
1: तुमसे मिलने आई, मंदिर जाने के वहाँ पहाने
0: भाई फिर भी आना है, आपसे मिलना है और साथ चलना है। चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, आपको साथ निभाना होगा, मेरी आवाज़ सुनकर रुकना होगा, साथ लेना होगा मुझे। कभी कभी भाई पीछे छूट भी जाऊं तो साथ लीजिएगा। सो माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। इफ यू हैव जस्ट जॉइन मी, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं आपको कि भाई अगर आपको पैसे भिजवाने हैं भारत, तो सही समय है, अच्छा रेट है, मौके का फायदा उठाइए। योर 1 pound इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कुड गेट यू मैक्सिमम 127.45 rupees। 127.45 rupees का रेट चल रहा है। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी into win a 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. TNC apply. Terms and condition. भाई तो ये एक सूचना उनके साथ, तो इन दिनों में पैसे भेजना डबल फायदा करवाता, रेट अच्छा चल रहा है, साथ में ये जुड़ी हुई हैं ऑफर्स भी इनाम भी।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: पैसों की बात करें तो साहब पैसों की बरसात तो कल हो रही थी अहमदाबाद में। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला गया टाटा IPL 2026 का, और साहब जीतने वाली टीम 20 करोड़ रुपए टीम को, और उसके बाद भाई करोड़ तो पता नहीं कितनों ने बटोरे, लाखों में कितनों ने बटोरे। और सोचने वाली बात यह है कि एक एक खिलाड़ी को, खिलाड़ियों को छोड़िए साहब, वो जो ग्राउंडमैन है उसको भी, जो एम्पायर हैं उनको भी, वहाँ तो इतना पैसा बट रहा था। मैं सोच रहा था मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के क्या कर रहा हूँ। हाँ सही बात है ना, मुझे तो ग्राउंड में होना चाहिए। वहाँ भाई वो रोलर भी फिराओ तो उसके भी जो है इनाम मिलता है कि बेस्ट पिच के लिए, बेस्ट ग्राउंड के लिए। लेकिन साहब कल का मैच याद रहेगा, और याद रहेगी विराट कोहली की वो पारी, 75 नॉट आउट, जब विजेता टीम के कप्तान रजत पाटीदार, हाँ बेंगलुरु की कैप्टन जो है रजत पाटीदार, वो ट्रॉफी उठा रहे थे, तो हमें लगा भाई आप क्यों उठा रहे हैं, ये तो विराट कोहली के नाम की है। तब विराट कोहली जो है गजब प्लेयर और अब भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो ये अभी और सफर तय करेंगे क्रिकेट जगत में। लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़ के भाई बहुत ज़्यादा पैसे जिसने बटोरे, इनाम बटोरे, उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। लेकिन भाई वैभव से उसके बारे में बात करेंगे आगे चल करके। अभी 15 साल का हुआ है, अभी हुआ ही है, और 15 साल का ये बच्चा तूफान मचा रखा उसने। पहले कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ये खराब हो रहा है क्या है? अगर खेलते कूदते नहीं तो सचिन तेंदुलकर भाई कहाँ से आता? मैं तो सोचता हूँ मैंने पढ़ाई लिखाई करके अपना टाइम वेस्ट किया है। सही बात है, मैं क्या काम आ रही है डिग्रियां बताओ, डबल एमए करके भी है? लेकिन बताऊं आपको कि जो खेला कूदा या जो थिएटर किया, जो मंच पर समय बिताया, जो संगीतकारों के गायक कलाकारों के साथ समय गुजरा, जो ऑर्केस्ट्रा चलाया, जो वो सब काम आ रहे हैं, और भाई कुछ धार्मिक रीति रिवाजों में दिलचस्पी थी वो भी सब काम आ रही है। आगे चलकर बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी के बारे में, अभी तो भाई कुछ संदेश आप तक पहुँचा दें।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 711,000 pounds.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me or you.
5: Southall Travel, at all protected.
6: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री सपरिवार अवश्य पधारिए रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF फॉर मोर डिटेल्स सोम यज्ञ .com call 07932 623852.
7: Search is changing.
8: Customers aren't just using Google anymore.
7: They're asking AI.
8: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
7: One business, one recommendation.
8: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
7: Will your business be the answer?
8: Or the one that got left behind?
7: The future of search has already started.
8: Have you? Visit HeartyHanks.com and make sure AI recommends you.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
10: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
13: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
14: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद हर फ्राइम शेप में है वो बचपन की याद
15: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट मंचूरियन मसाला पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट
14: जेमिन फ्राइम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर
16: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: और सॉन्ग रफी साहब की आवाज और रवि साहब का संगीत एंड द नेम ऑफ द फिल्म वाज नई रोशनी। और भाई ऐसे ऐसे गीत जो है कभी पुराने नहीं।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a gold.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। यहाँ ब्रिटेन में एक बात बड़ी चर्चा में है भाई, एक इंजेक्शन जो इतना घातक हो सकता है उसके लिए एक महिला फाइजर कंपनी को सू कर रही है। एक अकेली नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ वुमन हु टुक द कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन कॉल्ड डीपो प्रोवेरा आर सुइंग द फार्मास्यूटिकल कंपनी बिकॉज ऑफ दे आर सफरिंग ऑफ सीरियस हेल्थ इश्यूज। चर्चा में है काफ़ी। और एक खबर ये है कि भाई मौसम की जो गर्मी है उसने अब तक 17 लोगों की जान ले ली है। तैराक बनकर भाई पानी में उतरे और फिर लौटे नहीं, तो लोगों को सावधान किया जा रहा है कि भाई अतिरिक्त जो है एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। इसके अलावा भाई सब कॉन्टिनेंट से जो खबरें आ रही हैं उनमें कॉकरोच पार्टी, सुना आपने कॉकरोच जनता पार्टी? ये एक खबर है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप 6 जून को भारत जा रहे हैं। अभी वो भारत से बाहर हैं, तो भाई वो फाउंडर हैं और अभिजीत दीप के उनका नाम है। उन्होंने आज कहा है कि वो 6 जून को भारत जाएंगे और दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध शुरू करेंगे। भाई ये पार्टी अभी उन्होंने बनाई और इतनी पॉपुलर हो गई है, वो कॉकरोच शब्द का इसमें एक लंबी व्याख्या चाहिए विस्तार से बताने के लिए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कुछ कहा कॉकरोच के बारे में और इन्होंने ये शब्द पकड़ के उसके नाम से पार्टी बनाई और फिर सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल लिया। एक वीडियो में दीपक ने अपने हिमायतियों और छात्रों से दिल्ली में उनके विरोध में शामिल होने की अपील की है। 6 जून को वे वहां पहुंचेंगे। पश्चिमी बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। बीजेपी के 35 MLA यानी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। पश्चिमी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की लीडरशिप में बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। आज पार्टी के 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें से 13 ने कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली, कैबिनेट पद की, और बाकी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राज्य में मंत्रियों की संख्या अब 41 हो गई है। बड़ा राज्य है बंगाल। और भाई आपको बता दें कि पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को हरा करके ये शुभेंदु अधिकारी जो हैं ये बीजेपी के नेता के रूप में चुने गए और ये मुख्यमंत्री बने हैं। अब इनकी सरकार का विस्तार हुआ है। इंटरनेशनल खबरों में राष्ट्रपति पेजेश्कियान के इस्तीफे का दावा करने वाली खबरों पर अब टिप्पणी आ रही है। ईरान के कई सरकारी अधिकारियों ने प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे की खबर को अफवाह बताया, झूठ बताया है। सरकारी स्पोक्स पर्सन फातिमा मोहजरानी, इलियास हजराती और अली अहमदनिया राष्ट्रपति पेजेश्कियान के सरकारी सूचना परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है। इन्होंने अलग अलग पोस्ट में राष्ट्रपति के काम जारी रहने और देश की समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिशों का जिक्र किया। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत दर्ज की है, जबकि गुजरात टाइटंस रनर अप रहे हैं। दोनों ही टीमों को प्राइज मनी दिया गया। चैंपियन बनने पर RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को ट्रॉफी के साथ साथ 20 करोड़ रुपए का प्राइज मनी मिला है, जबकि रनर अप रही टीम गुजरात टाइटंस को 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं। राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर वैभव सूर्यवंशी को कुल मिलाकर 5 अवार्ड मिले। वैभव ने सीजन में सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप का टाइटल जीता है। उन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स, इमर्जिंग प्लेयर्स, मोस्ट 6 अवार्ड और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन समेत कुल 5 अवार्ड जीते। अमेरिका ने सीज फायर के बीच ईरान के राडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमला किया है। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी है कि हफ्ते के आखिर में ईरान के गोरुक और केशम आइलैंड में ईरानी राडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर आत्मरक्षा में यानी सेल्फ डिफेंस में हमला किया गया। इन हमलों को सेंटकॉम ने जवाबी कार्रवाई करार दिया है। दरअसल इससे पहले ईरान ने यूएस MQ-1 ड्रोन को गिरा दिया था। ईरान ने दावा किया था कि ये ड्रोन उनके समुद्री इलाके में था। मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, अब तक तो किया जा चुका होगा। मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर कल संडे की शाम को मुंबई में 89 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गई। उनकी एक करीबी दोस्त ने बताया कि उम्र से जुड़ी समस्याओं के कारण सुमन कल्याणपुर की मृत्यु हुई। सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पवन हंस शमशान घाट पर आज सुबह लगभग वहां के समय के अनुसार 11:30 बजे हो गया है। कल्याणपुर ने 1960 और 1970 के दशक में अपनी आवाज से लोकप्रियता हासिल की। वे पद्म भूषण से भी सम्मानित हुई थीं। कल्याणपुर ने कई मशहूर गाने गाए, इनमें से एक दो हम आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। भारत में कमर्शियल LPG सिलेंडर और महंगा हुआ है। अब उसकी कीमत में बढ़ोतरी के बाद अभी मतलब आज से ही हो गया है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी रिफाइनर कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 42 रुपये बढ़ा दी है। और एक खबर अभी भी आ रही है भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से। म्यांमार में कल संडे को हुए एक भीषण धमाके में 55 लोगों की जान चली गई है, दर्जनों घायल हुए हैं। उस इलाके में हुई है ये दुर्घटना जो विद्रोहियों के कब्जे में है। शान राज्य में नामखाम टाउनशिप में हुई इस घटना के बारे में एक सोर्स ने बताया है कि 25 महिलाएं और 30 पुरुष मारे गए हैं। कुछ अन्य रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस इलाके पर कंट्रोल रखने वाले ग्रुप और सेना के खिलाफ लड़ रहे टोंग नेशनल लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि खदान और पत्थर तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक फट गए, इस कारण ये हादसा हुआ है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: ये है Like a Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: लौट आइए अब संगीत की ओर और सुनिए कंठ कोकिला लता मंगेशकर की आवाज। गुड मॉर्निंग।

0: Laika Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: रेट सुन लीजिए भाई, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 127.86 रुपीस, पाकिस्तानी 374.82, श्रीलंकन 443.93, बांग्लादेशी टकेज 165.2 एंड अफगानी 84.81.
0: Laika Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Well, the gold is sold at the rate of 107.49 pounds per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: एक सौ पांच सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रहा छे सखना रेजो हस्बैंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्य नी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रात ना 8 वागे टिकट बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखना रेजो हस्बैंड जी
4: धार्मिक आस्था अने भक्ति साथे जोड़ावानो सुंदर अवसर माँ कृपा फाउंडेशन यूके लईने आवी रह्यु छे श्रीमद भागवत सप्ताह 7 जून थी 13 जून 2026 सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे श्री विपुल कृष्ण शास्त्री जी जूनागढ़ वाला वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 10 स्टोनफील्ड वे साउथ राइसली HA4 0JS रोज सांजे 6 वाग्या पछी प्रसाद नी व्यवस्था रहेशे डोनेशन अने वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो रश्मि शाह 07777 28 7509
5: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
6: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी विवेक हाउस बार एंड किचन
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स
6: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
5: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट मेक इट मेमोरेबल
6: गॉडफादर एंड कंपनी टेस्ट द लेगेसी लिव द मोमेंट
5: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड कॉल 07300998823
6: बुक योर टेबल टुडे
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे
8: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
7: ये तो बताओ कोई पता चला
8: गुरु गुरु
9: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून
7: चारू तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून टू बुक कॉल 0208514540 बुक ऑनलाइन एट Eventbrite
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Laika Gold
12: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
13: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
14: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर हाई स्पीड एक्शन हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स बिल्कुल अनमिसेबल अपने टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लंदन 23rd और 26th जून बी देयर
13: सो इंडिया लुकिंग टू प्रेस होम दैट एडवांटेज देयर इज अ चांस
15: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald Disposables, available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
16: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
16: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
16: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
17: Be part of a historic grand opening.
18: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
17: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
18: Depart 5th of September. Call now on 0203-773-633.
17: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
19: Lal chadi maidan khadi, kya khub ladi, kya khub ladi.
1: Ladai jhagda band karo. Samacharon ka samay ho gaya hai. Khabron ki or chalo.
19: हम जहाँ से गए
1: मत जाओ अभी रफी साहब,
19: बस आंख मिली और बात बड़ी
1: बात बड़ी. न्यूज इज नेक्स्ट ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क. समाचारों के उस पर हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी.
20: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
21: The top stories this hour. Concerns have been raised over a contraceptive injection that some women claim causes brain tumours, blindness and other life-altering conditions. A group is suing pharmaceutical giant Pfizer for its drug Depo-Provera that's used by millions worldwide. Pfizer insists they carry out rigorous monitoring of their medicines. A legal fight's now underway in Scotland. Solicitor Patrick Maguire says those affected should be compensated.
22: You can't put an atomic bomb equivalent of a medical device on the market and put a warning on it and think you can get away with that. It's just not that simple. The product wasn't safe, the warnings were not clear, and the women have suffered the most horrific injuries.
21: Emergency crews are continuing to search for an 11-year-old boy in the River Don in South Yorkshire. 17 people have died in just over a week in UK water-related incidents. Text messages and emails between ministers discussing Lord Peter Mandelson's appointment as the UK's former US ambassador are expected to be published later. It's understood details about his security vetting won't be included. Campaigners are warning millions of vapes are still being binned despite the UK's ban on single-use devices. Research found while this has decreased, 6.3 million were still discarded per week in the last year, down from around 8 million a week in 2024. Scott Butler from campaign group Material Focus wants a return scheme.
23: There needs to be a licensing system that's put in place, which includes requirements for take back so that can be enforced properly. People should just, if they do vape, then use rechargeable models, reusable models, always put them in a safe specialist container.

0: officially London's number one Asian commercial radio group.
1: Feel that? That little buzz of excitement? That's the weekly flutter. With chances to win up to £10,000, enter British Heart Foundation's lottery for a thrill with goodwill behind it. Because when you play, it helps fund life-saving research. So go on, keep playing, keep winning, keep us beating. Search BHF Lottery. Gamble responsibly, over 18s only. T's and C's apply. Please see our website for more details. British Heart Foundation is a registered charity.
2: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
3: Very good morning. आज के मौसम के विषय में आपको बता दें भाई, मौसम वाले कह रहे हैं कि गर्मी तो आज भी होगी लेकिन उतनी नहीं जितनी पिछले कुछ दिनों में पड़ चुकी है। वेल, आज मोस्टली इट विल बी ड्राई, लेकिन बीच में आज बादल और बारिश की आशंका भी बनी हुई है। आज रात को बादल ज़्यादा छाएंगे, दिन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्री तक जा सकता है। हल्की बूंदाबांदी और हल्की हवाओं का भी आज के मौसम में मिश्रण रहेगा।
4: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
5: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हो गए हैं और बहन भाइयों, मनोरंजन कार्यक्रम में ये पड़ाव चिंतन के लिए है। थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं वुल्वरहैम्पटन से श्रीमती गीता शर्मा का भेजा आलेख। गीता जी बिल्कुल गीता के संदेश की तरह एक पैगाम भिजवा रही हैं, एक छोटे से प्रसंग के साथ। आइए सुनते हैं आज का विचार, आज का चिंतन।

लाखों मन है जमा जखीरा, पर किस्मत में दो रोटी है। जिसके पास करोड़ों है वो भी दो रोटी से ज्यादा तो नहीं खाता होगा, वो हमसे कम ही सोता होगा, कम ही खाता होगा और कम ही खुश रह पाता होगा। एक सूफी फकीर वाजिद हज यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में जमाने की बात है, पुराने जमाने की, जब सस्ता जमाना था, उसने अपनी पॉकेट में एक पैसा रख लिया एक दिन के भोजन के लिए। ये देखकर उसके एक धनपति दोस्त ने कहा, पैसे वाला था उनका दोस्त, कहने लगा, अबे ये क्या कर रहे हो भाई, ये लो थैली, इसमें बहुत सारी अशर्फियां हैं, ये रख लो। वाजिद ने कहा, देखो वैसे तो एक दिन के लिए भोजन के लिए मैंने पैसा रख लिया है, अब तुम्हारी अशर्फियां भी रख लूंगा तो ये पहले गारंटी दो कि मैं अगले दिन तक जिंदा रहूंगा। भाई जब कल का भरोसा नहीं है तो कल के लिए पैसे संभाल के क्यों रखूं, आज के लिए मेरे पास काफी है। ये इस पर दोस्त ने हंस के कहा, देखो भाई बात तो ठीक है आपकी, लेकिन ये तो उसके अख्तियार की बात है। जीवन मरण तो उसके हाथ में है, ऊपर वाले के। इस पर वाजिद ने कहा कि वो एक पैसा आज के लिए काफी है, वही रखेगा, कल का भरोसा ही नहीं तो कल का इंतजाम क्यों। ये बात पास में बैठा एक फकीर सुन

रहा था और संत वाजिद की बात सुनकर वो हंसने लगा, जोर जोर से हंस रहा था। तो उसके संत वाजिद ने और उसके दोस्त ने भी पूछा, भाई हंस क्यों रहे हो, क्या बात है? कहने लगा, जब एक दिन का भरोसा नहीं, अगले दिन का भरोसा नहीं है, तो आज का भी भरोसा कैसे है? जब एक पैसा रख सकते हो तो एक करोड़ भी रख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? सुनकर के वाजिद का तो दिमाग घूम गया। उसने उसी समय अपनी पॉकेट से वह पैसा निकाला और फेंक दिया, किसी और के काम आएगा, मुझे नहीं चाहिए, आज पेट भरा हुआ है, अपने आप देगा वो। वो पैसा वहीं गिरा करके आगे बढ़ गया। और कहते हैं कि उस पैसे के त्याग के साथ ही संत वाजिद को ज्ञान प्राप्त हुआ। जितने लंबे दावे तेरे, उम्र भी उतनी छोटी है, लाखों मन है जमा जखीरा, पर किस्मत में दो रोटी है, उससे ज्यादा जमा करते रहो, वो किसी और के ही काम आएगा, कोई और ही खाएगा। भाई ये विचार करने की बात है और विचार का नाम ही है चिंतन।

पर ये ना कभी विचारा कि मनुष्य जन्म दोबारा, ये तुझको क्या मालूम है कि पाएगा कि ना। और ये जो चलता है सांस फुहारा और अगला सांस दोबारा, ये तुझको क्या मालूम है कि आएगा कि ना।

0: व्हाट अ सॉन्ग एंड व्हाट अ फैक्ट शी वाज सेइंग। नूरजहां की आवाज में ये गीत हमने आज के चिंतन के साथ शामिल किया और मुझे यकीन है कि एक अरसे बाद इसे सुनकर के आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
1: चिंतन चिंतन
0: की डमडा परोसा यार दम आवे ना आवे, ये जो चलता है सांस फवारा और अगला सांस दोबारा, ये तुझको क्या मालूम है कि आएगा कि ना। जितने लंबे दावे तेरे उम्र भी उतनी छोटी है, लाखों मन है जमा जखीरा पर किस्मत में दो रोटी है और उस पर भी नहीं कोई चारा। जब काल का हुआ इशारा तो टूटा हुआ ग्रास भी तो खाएगा कि ना। शब्दावली नत्था सिंह निर्दोष जी की, और भाई ये गीत और आज का संदेश, आज के चिंतन में हमने जो आलेख शामिल किया वो हमें भेजा था वुल्वरहैम्पटन से श्रीमती गीता शर्मा जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। और बहन भाइयों, याद दिला दूं आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, भारत पैसे भिजवाने हैं तो अवसर भी है, रेट भी अच्छा और मौका तो है ही, साथ में कुछ ऑफर्स भी हैं। सुनिए आज का रेट, £1 इन योर पॉकेट कुड गेट यू मैक्सिमम हाउ मच, अधिकतम आपको दिला सकता है 127.45 रुपये, 127.45 रुपीज। और भाई जून के महीने में भिजवाने का कुछ एक्स्ट्रा फायदा, सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000, ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Laika Gold.

0: और साहब रफी साहब के साथ ही आवाज किसकी थी भाई? पहला गीत हमने सुनवाया जा रे जाओ हर जाई लता मंगेशकर जी की आवाज में था, और उसके बाद ये गीत सुनवाया। दोनों सिमिलर आवाजें, दोनों एक जैसी, कभी कभी पहचानना भी मुश्किल हो जाता था। रेडियो में आने के बाद थोड़ा सा भाई फर्क महसूस होने लगा हमें, वरना इनकी आवाज़ को भी हम लता जी की आवाज़ समझते थे। और भाई ये आवाज़ थी स्वर्गीय सुमन कल्याणपुर की। अब भाई उनके नाम के आगे स्वर्गीय लग गया है, लेट सुमन कल्याणपुर, क्योंकि कल उनका निधन हो गया। और भाई सुमन जी के बारे में वैसे आपको बता दें कि इनका जन्म 28 जनवरी 1937 में हुआ था। सुमन हेमानी इनका नाम था, और भाई ढाका में हुआ था जन्म। ब्रिटिश इंडिया उस वक्त बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, ये भारत का ही हिस्सा था, वो हिस्सा भी, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। और उनके पिताश्री जो है वो शंकर राव हिमाडी तो है वो सारस्वत ब्राह्मण थे, तो ये एक ब्राह्मण कुल में जन्मी थी। और साहब संगीत साधना इनकी आवाज़ में साफ मुखर होती थी, दिखाई पड़ती थी। वैसे इन्होंने भाई कई जगह से ट्रेनिंग भी ली, सीखा भी, गाया भी, और छाया भी इनका एक गाया हुआ गीत। आज कम से कम एक दो गीत और हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे श्रद्धांजलि स्वरूप। आपको बता दें कि कल सुमन जी का दुखद निधन हो गया। कल 31 मई 2026 को 89 बरस की आयु में मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। स्वर्गीय सुमन कल्याणपुर, स्वर जिंदा रहता है, स्वर ईश्वर है, आपकी आवाज़ कायम रहेगी और हमारे कार्यक्रमों की शोभा बनती रहेगी। आपको भावभीनी श्रद्धांजलि इस गीत के रूप में। ये गीत था फिल्म जब जब फूल खिले से, रफ़ी साहब के साथ ये गीत उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गाया। और भी भाई कुछ एक गीत जरूर आज शामिल रहेंगे श्रद्धांजलि स्वरूप स्वर्गीय सुमन कल्याणपुर को।
1: Like our gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कम नहीं हो। मेरा दिल लुट कर भी तुम्हारा नाम लेगा, और भाई मेरा दिल आपका नाम लेगा। मानसी जी थैंक यू वेरी मच, और आप हैं कंचन अग्निहोत्री जी, आपको दुख हुआ है सुनकर के, बहुत लोगों को दुख हुआ है सुमन जी के जाने का। एक ऐसी आवाज, यादगार आवाज, गायक कलाकारों की श्रेणी में बहुत उत्तम स्वर था उनका, हम याद करेंगे उन्हें। विजय जी मॉरिशस में और विजय सटन में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नैना शाह जी थैंक यू वेरी मच, कहती हैं सुमन कल्याणपुर के विषय में जानकर के दुख हुआ है। एजाज चेशम में सुन रहे हैं हमें, नीलम ऑस्ट्रेलिया में सुन रही हैं। शोभना राय जी थैंक यू वेरी मच, सहर जगदीश जी बुशी में, सुनीता शर्मा और अर्जुन जी, अरुणा और भूपेंद्र पटेल, निर्मला और महेंद्र पटेल क्रॉयडन में सुन रहे हैं, पम्मी सिंह स्लाव में हैं हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और वियाना में हैं हमारे अनिल सोनी साहब, भाई रेगुलरली सुनते हैं, जुड़े रहते हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद रागनी का भी, आप सबके नाम किया हमने ये गीत, स्वीकार कीजिए। और गीत सुनवा रहे थे Feel Good Track,
1: brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: पॉडकास्ट अपडेट याद दिला दें आपको, लाइका एक्स्ट्रा हमारे यहाँ भाई, लाइका एक्स्ट्रा पर अब नया एपिसोड उपलब्ध है, पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 18, टाइटल है मोनोपॉज, और होस्टेड बाय रूबी रजा। और आपको बता दें कि भाई हमारे पुराने जो एपिसोड्स हैं वो भी अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
3: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Fever Tree Mexican Lime Soda. You're not like other mixers. Your zesty bite, twist of yuzu. Sure, you're perfect with vodka. But even on your own, you make the most exquisite soft drink. Fever Tree. Straight up or mixed. It's a matter of taste.
5: This is Leica Gold.
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Dharmik Astha and Bhakti Sathe Jodavano Sundar Avsar. Maa Krupa Foundation UK Laina Aviraujhe Shrimad Bhagwat Sapta. 7 June thi 13 June 2026 Sudhi. Roj Bapure 3 Vagya thi Sanji 6 Vagya Sudhi. Kathavajan Karshe Shri Vipul Krishna Shastri Ji Junagadhwara. Venue, First Floor, Unit 2, 10 Stonefield Way, South Rice Leap, HA40JS. Roj Sanje 6 Vagya Pachi. प्रसाद की व्यवस्था रहे। डोनेशन अने वधु माहिती माटे कॉन्टैक्ट करो रश्मि शाह 0777-228-7509.
11: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
12: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
11: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: Step into the new grand showroom of Gardeil's Couture, Southall.
15: At 159 The Broadway, Southall. UB1 1LR.
14: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
15: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gardeil's Couture. Now open 7 days a week.
14: Gardeil's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
16: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिसमां भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मां दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मां जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Goon. Aur online suno likeagoon.com pe.
17: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: इस सफर में एक मुसाफिर हम सफर को ढूंढता है भाई। हमारे हम सफर हैं हमारे श्रोता, और उनमें एक नाम शामिल है नीला चौधरी जी का। रेगुलरली सुनते प्रकाश सूथर, एसएस भोगल और अनीता जी, आपकी सहेली का किसी का जन्मदिन है आज। माय फ्रेंड निर्मला सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे। भाई निर्मला जी को कहिए कि हम कैसे माने कि उनका बर्थडे है जब तक केक नहीं पहुंचेगा स्टूडियो में। हाँ तो चुपचाप छोड़िए, क्या रखा है सच्ची बातों में। अब मैंने मुझे मालूम है अगर मैं कहूँगा कि भाई केक भिजवाओ तो वो ना वो आजकल जैसे चाय का कप भेज देते हैं पिक्चर में।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, हाँ। आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम,
0: मालूम है मालूम,
1: अपने प्रेजेंटर हाँ। रवि शर्मा के साथ।
0: थैंक यू वेरी मच भाई, हम भी ऐसे ही चाय पिला ऐसे ही गाने सुनवाएंगे आपको, एक पिक्चर भेज देंगे गाने की जैसे करते हैं। लेकिन दिल की गहराई से निर्मला जी को कहना चाहते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे निर्मला जी।
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: लीजिए मैं रेट बता देता हूँ, अगर पैसे भिजवाना चाहते हैं अपनों को तो भाई नोट कीजिए। £1 इज इक्वल टू टुडे, मतलब दे आर गिविंग फॉर £1 इन इंडियन करेंसी 127.78 रुपीज, पाकिस्तानी 374.96 रुपीज, श्रीलंकन रुपए 444.27, बांग्लादेशी टका 165.25 एंड अफगान अफगानी 84.8।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Our gold is trading at the rate of 107.54 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
5: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स,
5: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल।
5: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट।
4: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड, कॉल 07300998823।
5: बुक योर टेबल टुडे। लंदन, दिस 20th जून बॉलीवुड की पावर हाउस वॉइस भूमि त्रिवेदी आ रही है लाइव इन लंदन।
6: राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे।
5: गेट रेडी फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, डांस एंड फुल ऑन एनर्जी।
6: उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी।
5: प्रेजेंटेड बाय वन वर्ल्ड इवेंट्स एंड SR इवेंट्स एट क्रिस्टल ग्रैंड फ्लाव, 6 PM टू 11 PM। बुक नाउ एट srevents.com। भूमि त्रिवेदी लाइव इन लंदन, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
7: Are we there yet?
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
8: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
8: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
9: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
10: T's and C's apply.
11: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
12: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
11: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
12: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
11: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
12: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
11: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
12: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA. PRA and regulated by the FCA and PRA.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
14: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
13: high appreciation
14: in Dubai.
15: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Laika listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026, feel the beat, live the legacy.
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio. You.
16: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100 at all protected.
17: London, good news. Aapka favorite iTech, up TRS Cash and Kerry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect. For retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
18: Spring into the sunshine on Leica Radio Network.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.

सुमन कल्याणपुर जी की आवाज और साथ में रफी साहब का स्वर। ये गीत हमें 12 बजे की खबरों तक ले जाएगा और खबरों के उस पार रवि शर्मा आपका इंतजार करता हुआ यहीं पाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।

प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर में श्रोताओं का स्वागत है, और स्वागत एक ऐसी आवाज से कुछ हटके है पर भाई गायक कलाकारों के मैदान में बड़ी डटके है, वन एंड ओनली यसुदास।

0: हमसे दूर कभी जाइयो ना भाई, ये वादा तो हमें आपसे चाहिए। अपने रेडियो को अपने पास रखिए, बल्कि अपनी पॉकेट में रखिए, दिल के करीब। छोटा सा कोई ट्रांजिस्टर होया भाई, अपने फोन के ऊपर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और फिर रवि शर्मा आपकी पॉकेट में ऑल द टाइम। दो गीत बैक टू बैक हमने आपको परोसे और मुझे यकीन है कि आपने स्वीकार किए, आपको पसंद आए होंगे। ये कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम दौर है। 12:15 बजे चाहते हैं, याद दिला दूं आपको कि मेरी और आपकी ये मुलाकात दोपहर बाद 1 बजे तक जारी रहेगी और उसके बाद होंगे बाली ब्रह्म भट्ट आपकी मेज़बान। तो साहब लीजिए, एक बार फिर से नोट कीजिए, SBI का ये संदेश, पैसे अगर भारत भिजवाना चाहते हैं तो क्या ऑफर कर रहे हैं वो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफरिंग, फॉर £1 यू कैन गेट मैक्सिमम 127.45 रुपीज, 127 रुपये और 45 पैसे का रेट इस समय चल रहा है। और वो कहते हैं कि भाई अगर आप जून के महीने में भिजवाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा उठाएंगे। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000, ये भी याद रखिएगा। ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। शर्तें लागू, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीस अप्लाई।
2: ये है Like a gold.
3: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखणा रेजो हस्बंड जी।
8: Location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danyo, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
6: transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
8: London, good news. Aapka favorite iTech, up TRS Cash and Kerry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
11: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
12: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और बहनों भाइयों, इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है एक नए आर्टिस्ट ऑफ द वीक के साथ। और इस सप्ताह के कलाकार का नाम है, राइटर हैं, लिरिसिस्ट, गीतकार, नाम है उनका श्यामलाल बाबू राय। इस नाम का कोई गीतकार याद आ रहा है? अरे नहीं भाई, ये गीतकार भी अपना नाम बदल लेते हैं और भाई जो जिस नाम से मशहूर होते हैं तो वो नाम इनका पहचाना हो जाता है, जाना पहचाना होता है। तो श्यामलाल बाबू राय नाम से तो आप उन्हें नहीं पहचानेंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई इस सप्ताह के गीतकार का नाम है स्वर्गीय इंदीवर, क्या गाने लिखे हैं साहब उन्होंने। कल सुमन कल्याणपुर जी का निधन हो गया, उनके होठों पर सजा था इंदीवर का लिखा ये गीत। झांसी में पैदा हुए थे श्यामलाल बाबू राय।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में आपने गीत सुना, इंदिवर का लिखा हुआ। इंदिवर हैं इस सप्ताह के कलाकार। और अब सुनिए मन्ना डे का स्वर। दिल की बात सुना रहे हैं।

0: दिल का हाल सुना आपने मन्ना डे की आवाज में, एंड दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म, भाई वो पुरानी फिल्म श्री 420 याद होगी आपको, 1958 में आई थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, लेकिन साहब उस पूरी कहानी बड़ी कलरफुल थी उसकी, एंड दैट वाज ब्रॉट टू यू बाय
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और साहब कुछ एक जानकारियां आपके साथ साझा करनी है, आपको याद दिलाना है कि भाई एक तो लेजेंडरी गायक कलाकार हरिहरन तशरीफ ला रहे हैं. हाँ, हरिहरन आ रहे हैं सोल इंडिया कार्यक्रम लेकर के रॉयल फेस्टिवल हॉल में, उनकी परफॉर्मेंस है. और कब है ये नोट कर लीजिए, लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में सैटरडे 4 जुलाई को. टिकट्स एट southbankcentre.co.uk एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. इसके अलावा भाई लाइका रेडियो नेटवर्क हैज़ कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागा सन. डिटेल्स एट laikaradio.com.
1: ये है लाइका गोल्ड.
3: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस. विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल.

0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: साउथहॉल ट्रेवल का एक संदेश है भाई आपके नाम, और सुन लीजिए फिर फैसला कीजिएगा। अगर कहीं छुट्टियों में जाना चाहते हैं, जाना क्या चाहते हैं वो तो कहते हैं जाओ, मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथहॉल ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन। Trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award, Southall Travel. Visit Southall Travel or call 0208-574-8410.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
5: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
5: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
4: Cashback Remortgages. The broker that gives you back.
6: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
7: Then come to Godfather and Company, Vivek House, Bar and Kitchen.
6: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala to biryani, fresh breads and refreshing drinks.
7: Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
6: Friends, family ya special night out, make it memorable.
7: Godfather and Company, taste the legacy, live the moment.
6: Visit Vivek House, Watford. Call 073-00-99-8823.
7: Book your table today.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
11: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
10: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
11: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
10: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
12: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
13: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
12: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
14: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

लौट आई एक बार फिर से संगीत जगत में। भाई किशोर कुमार का स्वर प्रोग्राम में शामिल हुआ कि नहीं इस घंटे में? लीजिए पेश है

0: जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। और बहन भाइयों, कल ये आवाज खामोश हो गई। मुंबई में सुमन कल्याणपुर रफी साहब के साथ गा रही थी ये गीत, और इस गीत में जो शब्द आए, मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है, हमेशा याद आएंगी। सुमन कल्याणपुर भाई अपने गीतों के माध्यम से लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में अपना घर बनाएंगे। सुमन हेमादी 28 जनवरी 1937 में ढाका में उनका जन्म हुआ, और 31 मई कल संडे की शाम 89 बरस की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ। जाने वालों की याद आती है और आएगी।
1: दिल एक मंदिर है।
0: सुमन कल्याणपुर की सदाबहार आवाज गूंजती रहेगी, याद दिलाएगी उनकी। अक्सर उनकी आवाज को लता जी की आवाज से भाई मैच किया जाता था, कई बार लोग धोखा खा जाते थे कि ये लता जी की आवाज है या सुमन जी की। Often mistaken to be that of Lata Mangeshkar due to their similar tone and texture. सुमन कल्याणपुर का कैरियर जो है 1954 से शुरू हुआ और भाई 1970 तक तो चरम पर रहा। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद दिला दूं आपको कि भाई बाली भाई फिल्मी दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा कर लाते हैं, तो वो भी श्रद्धांजलि स्वरूप उनके बारे में काफी कुछ बताएंगे। एंड ही इज नेक्स्ट ऑन लाइका गोल्ड रेडियो।
2: अप नेक्स्ट बाली ब्रम्बट्स विद गोल्ड आफ्टरनून्स ऑन लाइका गोल्ड।
0: और भाई भाइयों, रवि शर्मा इज साइनिंग ऑफ। हमारी आपकी मुलाकात कल होगी 10 बजे की खबरों के बाद। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ सुपर्ब डे। बाय बाय फ्रॉम रवि शर्मा।

0: Temperatures 21 Celsius maximum in London and 19 Celsius in the Midlands.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Like a gold.
0: Bali Brambat. थैंक यू रवि शर्मा जी, मिलकर बहुत अच्छा लगा, एक जप्पी भी मिल गई मुझको। एंड थैंक्स टू सरिता सबरवाल जी, जिन्होंने इतने दिनों तक मेरी सीट संभाली, थैंक यू वेरी मच। सुमन कल्याणपुर।
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. Spring hits on Leica Radio Network.

0: जौहर महमूद इन गोवा, मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai
4: Laika Gold.
1: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Laika Gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: विजिट TravelHubWorld.com. लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th to 21st June वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर. फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए. रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद. आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें. वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF. फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com. कॉल 07932623852.
8: Location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 24-hour line.
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
13: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
2: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
13: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
14: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
15: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: our sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस. विजिट startours.co.uk.

फिल्म नसीब में डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन कल्याणपुर. वी आर डूइंग अ डेडिकेशन ऑन सुमन कल्याणपुर ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स. मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट, आपकी

0: नेक्स्ट आवर में मैं आपको ले चलूंगा वही सफर पे जहां इन्होंने एंट्री ली थी बॉलीवुड में, और कैसा है, कैसे कैसे अच्छे अच्छे गाने गाए थे। नेक्स्ट गाना रमा जी आपके लिए।
1: लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर, दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क।
0: शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म है जहां प्यार मिले। सुमन कल्याणपुर जी ने क्या गाया, चले जा जहां प्यार मिले। चले जा 3 बार है मुझे लगता है। सुमन कल्याणपुर passed away yesterday at the age of 89 in Mumbai. ओम शांति।

0: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
1: Film hai Anjana, 1969 ki. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी की लिरिक्स, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर।

0: नौशाद का संगीत और खुमार पारंकवी ने लिरिक्स लिखी। ये गाना फिल्म साज और आवाज़ का था, 1966 की फिल्म। उसके पहले आप सबका फेवरेट, ये दुनिया के बदलते रिश्ते। थैंक्स फॉर योर वंडरफुल मैसेजेस, अप्रिशिएटिंग द ट्रिब्यूट दैट आई डिड। मैं सुबह 4 बजे तक ढूंढता रहा, 3 घंटे के गाने मतलब कंपाइल करना इजी नहीं था, कौन सा गाना पहले डालूं, कौन सा बाद में, और 3 घंटे का शो करना, इट्स वाज क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क। पर सारी डिटेल्स भी लेनी पड़ती है, सो लेकिन आपके मैसेजेस जब मैं पढ़ता हूँ, आई फील इट वॉज वर्थ माई एफर्ट्स। एंड इतने दूर दूर से मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। हमारे रमेश रमली जी, मेरा दोस्त, हु इज़ सेलिब्रेटिंग मडाराका डे इन केनिया, एंड ही इज़ विशिंग एवरीबडी एट लाइका थीम एंड द ग्रीटिंग्स फ्रॉम विजय, उषा, कैलाश, अरुणा, एंड दे आर ऑल प्लेइंग कार्ड्स टुडे बिकॉज ऑफ द हॉलीडे। एंड एक गाना ज़रूर इनके लिए मैं पेश करूँगा, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू जिन्होंने सुमन कल्याणपुर के लिए प्रे किया, उनकी सद्गति को, उनकी जो आत्मा है उसको सद्गति प्राप्त हो। एंड ऑल आई कैन से इज ओम शांति फॉर सुमन कल्याणपुर। आगे जाते हुए हम एक गाना ऐसा पेश करेंगे जो बहुत खूबसूरत गाना है, इन्होंने गाया था, एंड द लिरिक्स वर बाई नन अदर देन इंदिवर जी। इंदिवर जी, आई वुड से ही गॉट रिकग्निशन फ्रॉम अ फिल्म इन 1951, जो मल्हार फिल्म का गाना था। ओवर 1600+ सॉन्ग्स इन 300+ फिल्म्स इंदिवर जी ने लिखे थे इन 4 decades। एंड उनका असली नाम श्याम लाल बाबू राय, जी हाँ, बॉर्न ऑन 1st of January 1924 एंड passed away sadly on 27th February 1997 after his 73rd birthday. इंदिवर जी, उनके गाने आप सुनेंगे थ्रू आउट द वीक, लेकिन आज का गाना मैंने चूज किया है जो उन्होंने लिखा था सुमन कल्याणपुर जी के लिए। फिल्म है रेशम की डोरी, संगीत शंकर जयकिशन का, और इंदिवर जी ने लिरिक्स लिखी थी। वो नेक्स्ट गाना होगा, विच इज बहना ने भाई की कलाई। So thank you for all your messages and let's carry on the tribute.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.45 Indian rupees. You send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and you will be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Laika Gold.
4: You're listening to Bali Brahmbhatt in Gold Afternoons.
5: Gold Afternoons.
4: Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
6: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
7: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location,
5: high appreciation
7: in Dubai.
8: Two businesses,
9: same town,
8: same service.
9: One appears on page one of Google,
8: the other doesn't.
9: Guess which one gets the customer?
8: The truth is brutal.
9: The first page of Google gets the business.
8: Everyone else gets what's left.
9: So here's the real question.
8: When your customers search for what you sell, do they find you?
9: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
1: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
10: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
10: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
10: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
10: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
11: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira twin centre escape. Fly from the UK, enjoy three night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
14: London, good news. Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
15: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
2: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: और ये गाना हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक इंदिवर जी ने लिखा फॉर सुमन कल्याणपुर.
1: Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.

0: What an iconic song. She will always be in our hearts for giving us such wonderful songs with her voice. Next song is my favorite. Film hai Bachpan. Suman Kalyanpur aur Rafi Sahab.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: ये गाना जो है ये मेरा फेवरेट है क्योंकि सरदार मलिक ने कंपोज किया था, सुमन कल्याणपुर जी को गवाया था इन्होंने रफ़ी साहब के साथ. फिल्म थी बचपन, 1963 की फिल्म. तेरे हम हो सनम, इतना प्यारा गाना है और इतने प्यारी अदा से उन्होंने गाया भी. लोग आज तक ये समझते रहे कि ये लता मंगेशकर जी की आवाज़ है, लेकिन आज मैंने 3 घंटे का ट्रिब्यूट करके सबको अवेयर कर दिया कि ये सब गाने जो आप सोचते थे लता जी ने गाए थे, वो एक्चुअली सुमन कल्याणपुर जी ने गाए थे. सो थैंक यू फॉर योर फीडबैक. एंड आगे जाते हुए 2-4 और भी गाने होंगे जिससे हम उनको goodbye karenge.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: This is for Ramli and gang all the way in Nairobi, and Dr. Ismail who is in Mombasa with his friends.

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. It's slow on the A312, the partway southbound, before you get to the M4 Junction 3. Church Road and Mandeville Road, heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northolt Station. The speed sensor's giving a travel time there, around about 10 minutes. The A406 North Circular Road slowing southbound before you get to the Hangar Lane gyratory. A40 Western Avenue, heavy westbound before Gypsy Corner to the Tube, and severe delays on the Elizabeth Line between Paddington and Heathrow Terminal 4 and between Paddington and Reading. It's due to earlier overhead line problems at Paddington. There are minor delays on the central line. That's down to cancellations. That's your latest traffic and travel.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 a.m.
3: Bali Brumbat on Gold Afternoons.
4: Leica Gold.
5: Gold Afternoons with Bali Brumbat. Bali Brumbat is proudly sponsored by Gemin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Gemin Foods, the authentic taste of India.
6: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
7: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
8: इस जून FIH Hockey Pro League लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. India versus Pakistan, live at Lee Valley Hockey and Tennis Center. High speed action, high intensity moments, bilkul unmissable. Apne tickets abhi book kare at englandhockey.co.uk.
9: To open the scoring, he does.
8: India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
7: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
11: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
11: गारंटेड.
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल,
11: फोन 02085748410.
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
12: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
13: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन.
12: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स.
13: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
12: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल.
13: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट.
12: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड. कॉल 07300998823.
13: बुक योर टेबल टुडे.
14: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
15: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
16: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
17: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
16: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
17: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
16: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
17: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
16: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
18: Be part of a historic grand opening.
19: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
18: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
19: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
18: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
20: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
21: दिस सुपरहिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस. टेक योर टेस्ट बड्स टू द नेक्स्ट लेवल विद टिल्डा.

0: Shah on Gold Drive. Leica Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. Still got delays on the M4 onto the elevated section eastbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. The A4020 Uxbridge Road all good up between the Parkway and the Southall Park. The A312 Church Road and Mandeville Road heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northolt Station. The A406 North Circular Road heavy both ways with the Hangard Lane gyre today. A40 Western Avenue heavy westbound before Gypsy Corner. A316 Chertsey Road all good up now westbound from Twickenham Bridge to Onspur Bridge Road roundabout. To the Tube, and no service on the District Line eastbound between Ealing Common and Turnham Green, and severe delays on the rest of the line due to a faulty train at Gloucester Road.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
2: शाहरुख, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र. क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208 514 54 00. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Gold.
5: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी. फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे. टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk. कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655. सखणा रेजो हस्बंड जी.
6: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
7: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर. हाई स्पीड एक्शन, हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स, बिल्कुल अनमिसेबल. अपने टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk. India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
6: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
8: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
9: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
8: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
9: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
8: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
9: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
8: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
9: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
11: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344. Our line.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
14: एक ऐतिहासिक दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना. मंत्रा हॉलिडेज, कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
7: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब टीआरएस कैश एंड कैरी साउथ हॉल में ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस परफेक्ट फॉर रिटेलर्स ट्रेडर्स टेकअवेज एंड केटरर्स आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग आईटेक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे साउथ हॉल UB24AX वंस यू विजिट यू कम अगेन एंड अगेन
0: नेक्स्ट Ashwini, in for Anisa Nasir on The Evening Show on Leica Gold.
9: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. मोटिवेशनल मंडे. कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? होंगे ही भाई. वीकेंड के बाद में जब मंडे आ जाता है और स्पेशली मंडे शाम आती है तो कितने खुश हो जाते हैं हम. अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, आके अपनी अपनी अटेंडेंस लगाइए. और जो हमारे साइलेंट लिसनर्स, जी सर, हाँ जी दीदी आप, हाँ जी भाई साहब आप, बस मुस्कुरा रहे हैं. आप ही से कह रही हूँ मैं, यहाँ पे हाय हेलो होता है कि नहीं भाई? हाँ ओके भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू मंथ टू ऑल ऑफ यू. ये हैप्पी न्यू मंथ का जो मेरा ट्रेडिशन है, एक तो मैं खुद को भी विश करती हूँ जब भी नया मंथ आता है, तो मैं आप सबको भी विश कर रही हूँ हैप्पी न्यू मंथ. जून में ना जाने कितने लोगों के बर्थडेज होंगे, एनिवर्सरीज होंगी, कितनी स्पेशल यादें होंगी. एंड बस आधे साल में हम पहुँच गए. दिस इज़ द सिक्स्थ मंथ ऑफ द ईयर. जागो सोने वाले, उठो जागो. ये छठा महीना आ चुका है इस साल का, 2026 का. कहाँ हैं आप? जो आपने अपने लिए गोल सेट किए थे उस रास्ते पे हो या नहीं हो, इसके बारे में बात करेंगे. लेकिन ऐसे कैसे होगा कि कुछ काम नहीं दूंगी आप लोगों को, असाइनमेंट नहीं दूंगी? तो मेरा आज का सवाल, माई सवाल इज टू ऑल ऑफ यू, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? क्या आप इंट्रोवर्ट है, खुद से जाके बहुत बातें या गपशप करना आपको पसंद नहीं, एक्सट्रोवर्ट है, अरे यार किसी के भी सामने बिठा दो हम तो बात कर लेंगे, या एम्बीवर्ट है, मैं देखूंगा देखूंगी कि वहाँ लोग कैसे हैं, और अगर मुझे लगा कि मुझे बातें करनी चाहिए तो फिर मैं बातें करने जाऊंगी या जाऊंगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट हम अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं एम्बीवर्ट. तो क्या आप एक्सट्रोवर्ट हैं, क्या आप इंट्रोवर्ट हैं, क्या आप एम्बीवर्ट हैं? आपका क्या अंदाज़ है? मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ? चलिए देखते हैं. आप अपने आप के बारे में भी बताइए और बताइए कि मेरा स्वभाव क्या हो सकता है.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 127 Indian rupees and 45 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
5: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money back, a better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
5: Call 0208 706 0915 for a free no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
4: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
6: London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show, KMB with Shanila, brings you stunning bridal collections from leading Afghan, Bangladeshi, Indian, Pakistani and Middle Eastern designers, showcased live on the runway, featuring special guest actress Kubra Khan, and a spectacular Qawwali night with Ahmed Shah and group, 12th June at the Willows from 1 p.m. till late. Get your tickets on Eventbrite or call 07989 972 879.
7: search is changing.
8: Customers aren't just using Google anymore.
7: They're asking AI.
8: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
7: One business, one recommendation.
8: So when someone asks AI, who's the best company for this?
7: Will your business be the answer?
8: Or the one that got left behind?
7: The future of search has already started.
8: Have you? Visit HeartyHanks.com and make sure AI recommends you.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
9: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Aa September Paris ma itihas lakhai rahyo che.
11: BAPS mandir no opening and Star Tours tamne lai jai rahyo che aa pavitra yatra par.
9: Europe na 3 thi 9 divas na tours.
11: France, Switzerland, Italy and Germany sathe.
9: Darshan pan ane Europe pan.
11: Seats jaldi bharai rahi che. Aaj ich book karo Star Tours sathe.
9: Call 02089002323. The Star Tours.
11: Travel Vans and you will travel again and again.
12: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 29 मिनट्स पास्ट 7, 1st of June, मंडे, द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। तो प्यार कर दर्द मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक। दर्द फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज़ में। 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। आगे बढ़ेंगे, उसके पहले हम विश करना चाहेंगे, हमारे बड़े ही प्यारे लिसनर हैं करसन पिंडोरिया जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। एंड आई एम श्योर आज आपने अपना दिन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। बर्थडेज में जनरली होता है कि दूसरे आके विश करते हैं तो दूसरे हमें स्पेशल फील करवाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने आप को भी स्पेशल फील करवाना चाहिए। फॉर ओवर आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी ईयर्स, यस, दूसरे मुझे गिफ्ट देते हैं लेकिन मैं भी अपने आप को गिफ्ट देती हूँ एवरी बर्थडे पे। येस आई एम स्पेशल, राइट? ये हर इंसान ने अपने आप को बोलना चाहिए, आई एम स्पेशल, बिकॉज यू आर अ सेलिब्रिटी इन योर सेल्फ। आपकी आइडेंटिटी, आपका होना हर किसी की ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ से जुड़े हैं, आपका महत्व है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू। नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुनाने जाने हैं, दैट इज़ वादा कर ले साजना, दैट इज़ फ्रॉम हाथ की सफाई। हाँ, मेरा सवाल, कितने लोग जवाब दे रहे हैं, मैंने आप सबसे पूछा है कि आप अपने आप को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, आप अपने आप को इंट्रोवर्ट कहते हैं। कहते हैं मतलब क्या, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, आप जानते हैं ना अपने आप को। या आप एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट लोग वो होते हैं जो देखते हैं कहीं जाने के बाद में माहौल कैसा है और फिर उन्हें लगा कि हाँ, इस इंसान के साथ में मेरी बातचीत अब जमेगी और हमारी पटेगी और ये लंबी चलेगी, तब वो गपशप करना शुरू करते हैं। अपने आप का स्वभाव बताइए, मेरे बारे में भी ज़रा अंदाज लगाइए, देखते हैं आप लोग मुझे कितना जानते हैं।
0: ये है लाइका गोल्ड, द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक्स है ना, मजे आ रहे हैं ना सबको, क्या बात है। हाथ की सफाई से सुनाया आप सभी को ये गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में। मेरा नाम है अश्विनी, दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 रहता है आपका और मेरा साथ। अच्छा जी, किशोर कुमार फैंस सुन लीजिए, गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन, इंद्रायणी, संजय एंड द 515 बैंड। इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19 जून को हो रहा है, द प्रिंस रेजेंट होटल चिगवेल एसेक्स। टिकट्स अवेलेबल एट eventbrite.co.uk। आप कॉल कर सकते हैं 0208514 5400 इस नंबर पे, और टिकट्स बुक कर सकते हैं वहां पे भी, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक अ गोल्ड रेडियो। हाँ जी, और अब चलते हैं यादों की बारात की तरफ। बिल्कुल, आप सब लोग अपने अपने बारे में लिखे जा रहे हैं कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, मेरे बारे में भी अंदाज लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल अंदाज लगाते चलिए, कई बार ऐसे होता ना, हमारी मराठी में भी कहावत है, जैसा दिसता तसा नसता, मतलब जो दिखता है वैसा नहीं होता है, फिर भी चलो अंदाज लगाते चलो। यादों की बारात मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, तुमसा नहीं देखा इस फिल्म से, यूं तो हमने लाख हंसी देखे। अच्छा, मेरी तरफ से ना ये गीत आप सबको, दुनिया जहां में आप जहां भी सुन रहे हो, आप सबके लिए ये गीत मेरी तरफ से डेडिकेशन टू माय ब्यूटीफुल गॉर्जियस हैंडसम लिसनर्स।
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: Like our gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128 Indian rupee, 374.8 Pakistani rupee, 445.51 Sri Lankan rupee, 165.24 Bangladeshi taka, 84.48 Afghani.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £107.31 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 7:50। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। पूछ रही हूँ आप सबसे कि क्या आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, एम्बीवर्ट हैं। वैसे तो मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट, लेकिन अब मुझे लगता है धीरे धीरे मैं एम्बीवर्ट में टर्न होते जा रही हूँ। हम चेंज होते हैं राइट विद आर एज, आर एक्सपीरियंस। आई थिंक आई एम टर्निंग इन टू एम्बीवर्ट एट टाइम्स, आई डू नॉट ऑलवेज।
0: Ashwini, brightening up your weeknights. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
3: ધાર્મિક આસ્થા અને ભક્તિ સાથે જોડાવાનો સુંદર અવસર માં કૃપા ફાઉન્ડેશન UK લઈને આવી રહ્યું છે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ 7 જૂન થી 13 જૂન 2026 સુધી। રોજ બપોરે 3 વાગ્યા થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી કથાવાચન કરશે શ્રી વિપુલ કૃષ્ણ શાસ્ત્રીજી, જુનાગઢ વાળા વેન્યુ, ફર્સ્ટ ફ્લોર, યુનિટ 2, 10 સ્ટોનફિલ્ડ વે, સાઉથ રાઇસલી, HA4 0JS। રોજ સાંજે 6 વાગ્યા પછી પ્રસાદની વ્યવસ્થા રહેશે। ડોનેશન અને વધુ માહિતી માટે કોન્ટેક્ટ કરો રશ્મિશા 0777228 7509।
4: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलेन स्टैनमोर के टेम्पल ग्राउंड्स पर। फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए। रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें। वेन्यू टेम्पल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA7 4LF। फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com, कॉल 0792-623852।
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
7: फोन 0208574 8410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: सीटीवी एंड सी5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम, प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई, इवेंट इन अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
11: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
12: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
11: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
12: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
11: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
13: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
14: The Evening Show with Ashwini. Like a
15: gold. London's biggest classics all day. This is Like a Gold.

0: Welcome. This is the second hour of the evening show with Ashwini. जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं मुझे ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. क्या गाने हैं, क्या गीत है ना, मजा आ गया ना. लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में सिंदूर फिल्म से सुनाया पतझर सावन बसंत बहार. उसके पहले वादा रहा सनम फ्रॉम खिलाड़ी. अच्छा, आपकी और मेरी चॉइस इतनी मिलती जुलती कैसी है? हाँ, मतलब मैं जो गीत सोचती हूँ वहीं आप लोग कहते हैं कि आज तो आपने हमारी लिस्ट चुरा ली. लोग नींद चुराते हैं, मैं आप लोगों की गानों की लिस्ट चुराती हूँ. हाँ. खिड़की दरवाजे लगा के रखिए, देखिए ऐसी लिस्ट, आप अपनी फेवरेट गानों की लिस्ट खुले में रख देंगे, पता चला जाते जाते मैं खिड़की में से आपकी फेवरेट लिस्ट उठा के यहाँ ले आई और यहाँ पे प्ले कर रही हूँ. आई एक्चुअली एंजॉय दिस कि जब मैं प्ले लिस्ट चुनती हूँ आप लोगों के लिए, जब जो गीत यहाँ पे लाइनअप करती हूँ, एंड देन व्हेन यू से कि अरे आज एग्जैक्टली आई वाज थिंकिंग ऑफ दिस सॉन्ग, और देखो तुमने ये प्ले कर दिया, बड़ा अच्छा लगता है भाई. वही तो आपका और हमारा कनेक्शन है ना, इसे तो कहते हैं म्यूजिकल दिल का कनेक्शन. ओके, अब बात करते हैं ऐसे स्कूल के किस्से के बारे में कि जहाँ पे बच्चे तो बच्चे लेकिन टीचर्स भी बड़े मजाक करते हैं. अब भाई बच्चों ने एग्जाम्स लिख दिए, अब बेचारों को जो भी मार्क्स मिले तो उनकी टीचर ने जो है, जो मीम्स आजकल हम लोग जो बड़े मीम्स एक दूसरे को भेजते रहते हैं ना सोशल मीडिया पे, वैसे ही मीम्स उनके टीचर ने उन बच्चों के पेपर्स पे स्टिकर्स लगाए. जिसको जितने मार्क्स मिल रहे हैं 35 में से, उस हिसाब से स्टिकर. बच्चों ने भी हार जोड़ दे कि हे भगवान, हमारी टीचर भी सोशल मीडिया से कितनी अफेक्टेड है. सोशल मीडिया एक्चुअली ज़िंदगी का एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप चाहे तो बहुत अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं. फॉर मी आई ऑलवेज से कि सोशल मीडिया मेरे लिए तो आशीर्वाद बन के ही आया है, है ना. एंड आप उसका यूज़ कैसे करते हैं एज ए सेट, उस पर डिपेंड करता है. बहुत सारे नए लिसनर्स आज मुझे मैसेज कर रहे हैं. हाँ जी, वेलकम जी, वेलकम, आइए, दिस इज़ अश्विनी का शो. तो यहाँ पे मस्ती मज़ा इंटरेक्शन चलते रहता है. हम लोगों ने बात की थी, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट हो या इंट्रोवर्ट है, सभी ने अपने अपने स्वभाव जो है मुझे बताए कि उन्हें क्या लगता है कि वो कैसे हैं. अब नेक्स्ट ट्रैक्स जो आपके लिए लाइंड अप हैं, वॉल्यूम अप रखना रखिए, नहीं तो मीडियम रखिए, लेकिन कम मत करना. हाँ, आज के गाने थोड़े मीडियम वॉल्यूम पे सुनने लायक पक्का है.
1: Like a cool, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, ये है Like a cool. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपीस 45 पैसे. और यू कैन सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI Yono app or branch before end of June and be in to win 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. Also 1 gram of gold coin every week when you send over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Like a Gold.
2: जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मजा आ रहा है ना? दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज में। स्वयं अर्पण से सुनाए आप सभी को ये गीत। अच्छा, आप लोग बैक टू बैक हर एक गीत की बात करें कि अश्विनी मजा आ रहा है यार, बहुत प्यारी प्लेलिस्ट है। मंडे है ना, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, हम लोग डरे भी रहते हैं, थके भी रहते हैं, उत्साह में भी रहते हैं। सोचा क्यों ना आपका मंडे और इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ में आपको सुनाई जाए गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो इन साउथ कोरिया 45 टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स वर डिनाइड एडमिशन टू 6 प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज आफ्टर इट वाज डिस्कवर्ड दैट दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन स्कूल बुलिंग। फैंटास्टिक। इन ब्राजील, अ बॉय हु वॉच्ड टीवी थ्रू अ नेबर्स विंडो टच्ड मिलियंस ऑफ हार्ट्स आफ्टर हिज स्टोरी वेंट वायरल। ही रिसीव्ड अ न्यू टीवी एंड फ्री इंटरनेट। ओह माय गॉड, लकी हिम। इन ब्राजील, रेड मैकाउज वाज स्पॉटेड अगेन इन द Atlantic forest after nearly 200 years. Many see it as a symbol of hope for wildlife conservation. In Germany, ye sabse interesting cheez hai. In Germany, a famous circus replaced live animals with giant 3D holograms. Audiences now watch elephants, horses and other animals as stunning projections instead of real performing animals. Hai na achhi achhi news. Abhi emotion of the day ki taraf hum log pahunch gaye. Motivational Monday hai. जिंदगी है, हर कदम जंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है और हम जी रहे हैं, इसके लिए शुक्रगुजार भी है। मोटिवेशनल मंडे फॉर ऑल ऑफ यू।
0: अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर फॉर द इवनिंग शो। इमोशन ऑफ द डे।

0: इमोशन ऑफ द डे।
1: Is it only me who gets emotional with this song? I just don't know. कहते ना एकदम दिल भर आता है, आँखों में आंसू आ जाते. Something I just don't know with this song. It happens with me. मेरी जंग से सुनाया आप सभी को ये गीत लता मंगेशकर और नीति मुकेश की आवाज में. This is the evening show with Ashwini.
2: ये है Like a Gold. 10:35 AM.
3: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 127.98 Indian rupee, 374.72 Pakistani rupee, 445.44 Sri Lankan rupee, 165.2 Bangladeshi taka, 84.90 Afghani.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £107.26 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 50 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। वाव वाव एंड थैंक यू, क्या बात है, मजा आ रहा है। आप सब जो प्लेलिस्ट एंजॉय कर रहे हैं ना, फैंटास्टिक। आई रियली लव इट जब आप लोग एक एक गाने के बाद जब आप कहते हैं ना कि अश्विनी हमारी ये यादें जुड़ी हैं इस गीत के साथ में, एंड आप लोग स्माइल करते हैं, आप कहना कि स्माइलिंग फेसेस जब मुझे, मैं इमेजिन करती हूँ आप सबके, मैंने आप सबको देखा नहीं लेकिन ऐसी एक छवि आप लोगों के मैं इन्जॉय कर लेती हूँ कि इस टाइप में आप दिखते होंगे ऐसे, है ना। सो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं। भैया आज मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। तो अगर आप सब, अगर आपको याद है, अगर आप इंडिया से हैं, 90s की वो एक ऐड आती थी, दूध दूध दूध दूध दूध है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल। आई डोंट नो, आई जस्ट रिमेंबर दैट वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है ना आज, और बहुत सारी चीज़ें और भी मनाई जाती हैं, बिकॉज हर रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है जो सेलिब्रेट होता है। लव आइलैंड डे, नेशनल गेम शो डे, नेशनल गो बेयर फीट डे, नेशनल ऑलिव डे, देन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस डे भी मनाया जाता है। सो और भी बातें होंगी, अब चल रहे हैं अगले आवर की तरफ।
0: Leica Radio 90s, Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Leica Gold.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
9: सीटीवी एंड सी5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम, प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई, इवेंट इन अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
11: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क। You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
12: The Evening Show with Ashwini.
11: This is Leica Gold, non-stop classics.
13: सुनिए
14: कहिए कहिए
13: सुनिए सुनिए
14: कहिए कहिए ना

0: करते मुझे
1: अच्छी
0: लगती है,
1: सब दिन और सब रातें मुझे अच्छी लगती है।
2: Spring into the sunshine on Leica Radio Network.

0: वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर। 9:13, इट्स 9:13, आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। अब इवनिंग से नाइट हो गई है, आप लोग सोच रहे हैं कि हम चले जाएंगे अश्विनी को गुड नाइट कह के, जा ही नहीं सकते। और भी अच्छे अच्छे गाने मैंने लगा के रखे हैं। अब बताओ। दिस इज फनी राइट, ऐसे हो जाता है ना कि हम एक दूसरे को ऐसे चिढ़ाते हैं। बिल्कुल, अरे फटाफट चलो किचन उचन साफ कर लो, कल सुबह की तैयारी कर लो, कुछ देर और मेरा साथ दे दो, है ना, फिर मैं भी अपने घर, फिर आप अपने घर में हो भाई, मैंने तो घर जाना है स्टूडियो से जी। तो हमारी गोल्ड नाइट सर्विस है, ओवरनाइट सर्विस, ज़रूर सुनिए। अगर रात में नींद नहीं आ रही है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, प्लीज़ कुछ नेगेटिव मत सोचते बैठना, हमारे बहुत अच्छे अच्छे गीत हम लोग आप लोगों के लिए लाइन अप करके रखते हैं। लाइका रेडियो 90s, तो 90s वाले बच्चों खुश हो जाओ, लाइका रेडियो पंजाबी, जी जिसको पंजाबी गाने पसंद है ज़रूर सुनिएगा, एंड लाइका गोल्ड टू। तो लाइका मीडिया आपके मनोरंजन के लिए कितनी सारी चीज़ें लेके आता है राइट, और मैं तो आ ही जाती हूँ मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 बजे के बीच, ब्यूटीफुल ट्रैक्स लाइन अप है आप लोगों के लिए, जरूर सुनिए।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 127 Indian rupees and 45 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: इवनिंग शो विद अश्विनी. अब मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या भाई वीकेंड पे इतना स्पेशल क्या खा पी लिया या क्या होमवर्क कर लिया कि आज की प्लेलिस्ट इतनी बढ़िया हो रही है. सही मायनों में क्या होता है कि जब भी हम प्रेजेंटर्स यहाँ पे आते हैं और आप लोगों के लिए प्रेजेंट करते हैं हमारा शो पूरे उत्साह के साथ, एंथुसियाज्म के साथ, एंड डेफिनेटली अपना रिसर्च करके आते हैं कि इस टाइम पे आपको क्या सुनना पसंद आएगा. और कहीं ना कहीं हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो भी हमें गाइडेंस देते हैं. आई वुड लाइक टू थैंक सैंडी अ लॉट क्योंकि उनका गाइडेंस मुझे हमेशा बहुत बहुत काम आता है. एंड आप अपने आप को तब लकी मानते हैं जब आपके ही प्लेस पे, आपके ही वर्क प्लेस पे आपके जो कलीग्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो आपके वेलबींग के लिए हमेशा आपके साथ में रहते हैं एंड दे करेक्ट यू एट टाइम्स व्हेन नीडेड. सो बिल्कुल इस नोट पे आई हैव टू से थैंक यू टू सैंडी बिकॉज जिस तरीके से उनका ध्यान रहता है जब मैं शोज़ करती हूँ और जिस तरीके से उनके फीडबैक आते हैं मैं कहाँ पे और क्या अच्छा कर सकती हूँ इसके बारे में, हमेशा मुझे वो सपोर्ट करते हैं. सो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई मेंटर है, कोई गुरु है, तो हमेशा एक तो आप ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए, भगवान को थैंक यू कहिए, धन्यवाद मानिए क्योंकि आप लकी हैं कि आपके लाइफ में एक गुरु है. एंड हमेशा कहा जाता है कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द गुरु अपीयर्स. सो नहीं है अगर गुरु तो प्लीज़ अपनी अपनी जो रिस्पेक्टिव फील्ड है उसमें कोई ना कोई गुरु आपको मिले इसकी पूरी पूरी कोशिश कीजिए क्योंकि जब गुरु का ज्ञान किसी चेले को मिलता है ना तो उसकी जो प्रोग्रेस होती है वो अनबिलीवेबल होती है. नेक्स्ट जो आपको सुनाने वाली हूँ, जी हाँ आप लोगों ने सही कहा कि आज मंडे है तो गज़ल है. जगजीत सिंह की आवाज़ में आप सबके लिए प्रेजेंटिंग दिस गज़ल.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: Ghazal.

0: Puzzle. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: ये है Like a Gold.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show KMB with Shanila brings you stunning bridal collections from leading Afghan, Bangladeshi, Indian, Pakistani and Middle Eastern designers showcase live on the runway featuring special guest actress Kubra Khan and a spectacular Qawwali night with Ahmed Shah and group 12th June at the Willows from 1 PM till late. Get your tickets on Eventbrite or call 07989972879.
1: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
0: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
1: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ.